Photography is a hobby, Darshan, not a career. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो।

सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हार्दिक सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनवालवा शुक्रवार का दिन है, 5 जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तमाम इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और भले देश के बीच में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम जो है DAB प्लस रेडियो के जरिए भी आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गए सुबह सुबह लोसियू का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है, शुक्रवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन मतलब होते हैं माता जी का दिन है, तो चले भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा माता जी का भजन की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। आरोही आरोही

रेडियो SBS के जरिए आरोही सिंह के आवास में ये सुंदर माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, गुड मॉर्निंग कहा है, खुद मूर्ख कहा है, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं टेलीफोन नंबर 03226611 पर, और इसी तार की नंबर पर आप ऐप द्वारा भी तार कर सकते हैं। गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में आज शुक्रवार की सुबह की प्रोग्राम में, भजन यात्रा प्रोग्राम में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है, कभी धूप कभी छांव।

0: तो कभी छाओ,
1: कभी धूप कभी छाओ। गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई। शुक्रवार का दिन है और सुबह की प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुबह की वक्त भीगा सा मौसम है, बारिश का मौसम, समय समय पर कहीं कहीं जोर टूट से बारिश हो रहा है। फिर भी आप सभी सुन वालों को एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। फिल्म माँ संतोषी माँ, उसी फिल्म का एक सुंदर माता जी का भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये सुंदर माता जी का भजन आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सर है 7:00 प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, चले प्रोग्राम में हरिओम शरण जी की आवाज में सुंदर औरत ही सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

हरिओम शरण, हरिओम शरण जी की आवाज में सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन 5 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को अनहिल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर सुनते ही रहना। माता जी का दिन है तो चले सुंदर सा लक्ष्मी माँ के भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन आप सभी सुनवालुकी सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS की जरिए पैमला जैन के आवास में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनवालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनवालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और खासतौर पर सभी सुनवालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए भी, उनकी पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अभी आपने सुना, लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

रेडियो SBS की सरिये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा सिंह की आवाज में तेरे नैना। अभी आपने सुना गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते।

सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शेरू तरफ से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर एक गाना जो कुमार सानू के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60. कुमार सानू के बाद उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

8 गाना इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक से एक खूबसूरत गाने आज की

का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन 5 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। बारिश का मौसम है, बादल छाया हुआ मौसम, फिर भी आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हर सुबह की तरह सुबह भी पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ पुरानी नगमे पुरानी फिल्में गाने आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ ये प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले आप सभी को भी स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी या चाय के साथ, और ले चलते हैं पुरानी फिल्मी नगमे की ओर। बारिश का मौसम है, भीगा भीगा सा मौसम है इस वक्त हॉलैंड देश के अंदर में। तो हम आपको ले चलते हैं लता जी के आवाज में काफी पुरानी फिल्म का गीत। फिल्म का नाम है बरसात, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

पुरानी फिल्म बरसात, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना, आशा करता हूं गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई फिल्म बरसात का गीत अभी आपने सुना। चलिए अब की बार महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सुषमा सरस्ता की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, पति पत्नी और वो, फिल्म का नाम।

और रेडियो SBS की जरिए महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सुषमा सरेस्ता की आवाज में ये गाना पेश की गई पति पत्नी और वो फिल्म का नाम ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। 9:11 वेटेड हो चुका है और रेडियो SBS की जरिए पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो चले अब की बार मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना वारिस फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है।

वारिस फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जितेंद्र, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, महमूद और अरुणा ईरानी का खास फिल्म वारिस का गीत मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। चले फिल्म बारिश की ओर, हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

0: मिस्टर जॉन,
1: क्या हो बाबा खान,
0: क्या हो बाबा खान,
1: क्या हो मिस्टर जॉन,
0: क्या हो मिस्टर जॉन,
1: या लाला रोशनदास।
2: पुरानी फिल्म बारिश का गीत पेश की गई है, 1957 का फिल्म, 1977 या कहिए 1957 का फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। श्री रामचंद्र का संगीत पर अभी आपने सुना, पद्मश्री मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में इस फिल्म में काम किया है देवानंद और नूतन। फिल्म बारिश का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में आपके बाहर रूना लैला की ओर हम आपको ले चलते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। ये प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पेश किया जा रहा है। दुनिया की कोने कोने में हजारों हजारों सुनने वालों इस प्रोग्राम को सुनते हैं। रूना लैला प्रोग्राम में

रूना लैला की आवाज में ये गाना पेश की गई दिल धर के मैं तुमसे। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 7 मिनट बाकी है प्रोग्राम में सुबह साढ़े 9 बजे में। तुलसीदास फिल्म का गीत पेश होगा मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

Orang ni film Tulsi Das, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो प्रोग्राम को सुनते हैं, काफी सुनने वालों बस हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, काफी सुनने वालों भी तार किया है, तार भी किया है। खासतौर पर श्रीमती महदा नुंदा, उत्तराखंड शहर की रहने वाली श्रीमती महदा नुंदा भी खबर किया है कि पुरानी नखमे का प्रोग्राम जो है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। 1968 का फिल्म का नाम आदमी है।

9 बजकर प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों आपको मालूम होंगे, लेकिन हम आपको खबर कर रहे हैं कि आज शुक्रवार 5 तारीख जून और कल शनिवार 6 तारीख जून ऑल टुगेदर फेस्टिवल मिलन होने वाले हैं, और वो भी बारन पेकिंग टाउन में आज से शुरू होगा। आज शुक्रवार 5 तारीख जून, फंदा फ्राइडे 5 जूनी एन मोर्खे कल शनिवार 6 तारीख जून, सैटरडे 6 जूनी पेकिंग टाउन बारन में मिलन ऑल टुगेदर फेस्टिवल। तरह तरह के पोडियम प्रोग्राम यहां पर रहेंगे आप सभी के लिए, बहुत से म्यूजिक ग्रुप डांस ऑपरेटर्स यहां पर रहेंगे। पोडियम प्रोग्राम जो आप सभी के लिए होगा, और खास तौर पर हिल फिल क्रांपियस, ढेर सा क्रांपियस खाने पीने के लिए हर एक सामान यहां पर रहेंगे। और उसके साथ आपको भी खबर किया जा रहा है, शनिवार 6 तारीख जून एक लाइव ऑपरेटर होगा म्यूजिक फॉर्मेसी एक्सप्रेस मेट लेडी संजना मुका एंड मिस्टर ब्लैक, और वो भी कल शनिवार शाम में 5 बजे से लेकर के रात्रि में 7 बजे तक।

गratis और gratis parkeren है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, चले किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश है। बारिश का मौसम है, समय समय पर जोर तोर से बारिश हो रहा है और समय समय पर धूप भी दिखाई देता है। किशोर कुमार, मेरी भीगी भीगी सी।

किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार के बाद द माइटी मुकेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जिसमें खूबसूरत नगमे पुरानी फिल्मी गाने पेश किया जा रहा है। बातें कम और खूबसूरत नगमे सादे आप हर के लिए माइटी मुकेश दो हों ठीले।

रेडियो SBS की जरिए द माइटी मूकीज की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए दो होंठ हिले अभी आपने सुना माइटी मूकीज की आवाज में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर। फिल्म प्यासा उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सॉन्ग बाय द लेट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता जी की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए लता जी की आवाज में गाना पेश की गई प्यासा सावन, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म कलाकार, उसी फिल्म का गाना किशोर कुमार के आवाज में पेश किया जा रहा है।

का गीत भी इसके लिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। 6 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में, एक गाना और होगा, उसके बाद प्रोग्राम में कुछ खबरें पेश किया जाएगी और खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं और भी खूबसूरत पुरानी नगमे लेकर के। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले प्रोग्राम में, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारा।

महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आयशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार फिल्म घराना का गीत।

रेडियो एस बी एस के जरिए मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी महेंद्र कपूर की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में महेंद्र कपूर जी की आवाज में।

बशरी मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना है पेश की गई आज के प्रोग्राम में। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम, मुझे कितना प्यार है तुमसे, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना, मोहम्मद रफी एंड लता।

मतरफिया और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम था, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मुखी सौलता होगा प्रोग्राम में। धरती कहे पुकार की फिल्म का

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसर उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। किशोर एंड लता प्रोग्राम में होगा।

कितना प्यार है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। और अब की बार मोहम्मद रफी एंड

रहे मोहम्मद रफी और खासतौर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आशा भोसले प्रोग्राम में होगा और आशा जी की आवाज में ये गाना

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जाने चमन शोला बदन।

0: मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश की गए, जाने चमन शोला बदन।
1: जाने चमन शोला बदन,
0: मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना पेश की गए, जाने चमन शोला बदन। सुनने वालों रेडियो एसबी

0: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: प्यार मरता नहीं दम निकलने से अरमान निकलने।
0: चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Jake hier, Abbas Mim. Sudah lalu Radio SBS ka website radiosbs.nl usia website ki zariye apna mobile telephone, tablet, iPad, computer ki zariye hamara program ko aap sun sakte hain aur sabhi internet radio ki zariye. Usi sudah lalu bas hamesha rozana Radio SBS ka program ko follow kar rahe hain. अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो आप सभी के लिए हमेशा पेश किया जा रहा है हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो।

रेडियो SBS के जरिए जावेद अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार जो पेश किया जा रहा है

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है अलका एंड उदित नारायण की आवाज में।

0: काबुल सुब्रियो की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में।

सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में, सभी काम काज किया जा रहा है। आप सभी का हर एक काम सस्ती दामों में बस किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-65-65।

गाना सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सितारों का सितारा रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, अभिजीत और खासतौर पर अलका जी की आवाज में। इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म का नाम है।

पेशकी गए अभिजीत और अलका जी की आवाज में खास गाना जो अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई फिल्म का नाम था इंटरनेशनल खिलाड़ी। उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए आज की प्रोग्राम में जावेद अली और श्रेया जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। खूबसूरत नख में आज की प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना।

गाना जो पेश की गए जावेद अली एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार के नंबर पर बहुत सी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते रहते हैं। मोहम्मद इरफान और साथियों की आवाज में ये गाना

जाने भी दे गाना बस प्रोग्राम में सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है जाने भी दे गाना जो प्रोग्राम में पेश हुआ है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radioSBS.nl।

पलक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, शान और साथियों की आवाज में ये गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शान और साथियों के आवास में प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज के प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे बस पेश किया जा रहा है कुमार सानू एंड साधना सरगम, इश्क में जीना इश्क में मरना फिल्म का नाम।

कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आयशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार फिल्म घराना का गीत आप सुनते

रेडियो एस बी एस के जरिए मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी महेंद्र कपूर की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में महेंद्र कपूर जी की आवाज में

बशरी मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना है पेश की गई आज की प्रोग्राम में। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम, मुझे कितना प्यार है तुमसे, फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना, मोहम्मद रफी एंड

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में दिल तेरा दीवाना फिल्म का नाम था। उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार मुखी सौलता होगा प्रोग्राम में। धरती कहे पुकार की फिल्म का नाम।

मुखी सौर लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसर उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560 किशोर एंड लता प्रोग्राम में होगा

कितना प्यार है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी एंड लता की ओर हम आपको ले चलते हैं। जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। और अब की बार मोहम्मद रफी एंड लता।

रहे मोहम्मद रफी और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है आशा भोसले प्रोग्राम में होगा और आशा जी की आवाज में ये गाना।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आज की इस दोपहर का प्रोग्राम में अभी आपने सुना। 12 मिनटों ओवर हाफ टू स्टूडियो टाइट हो चुका है हमारा प्रोग्राम तकरीबन 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। रोटरडम शहर के अंदर में शीला भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। शीला आपको भी अनहेल खुद मेरा शुभ दिन पेश किया जा रहा है, तार करने के लिए लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। एंड फिल्म निकाह सलमा आगा की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की इस दोपहर का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सलमा हक्का की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आहिस्ता आहिस्ता हमारा शुक्रवार का प्रोग्राम जो है खत्म होने पर आ रहा है, लेकिन आपको खबर किया जा रहा है आज से, आज शुक्रवार 5 तारीख जून और कल शनिवार 6 तारीख जून मिलन होगा, मिलन ऑल टुगेदर फेस्टिवल बारन पेकिंग टाउन में। तरह तरह की पोडियम प्रोग्राम होगा, ढेर सा क्रांपियस खाने पीने के लिए हर एक सामान भी रहेंगे। स्पेशल आपको खबर किया जा रहा है कल जबकि शनिवार है 6 तारीख जून 7 राक्षस यूनि, तो शाम में 5 बजे से लेकर के

Chaydari June. Vanaf 5 uur 's middags tot 7 uur. Doeghanta lagatar. Aapje dil behlane wale hem. Music formatie Express. Met Lady Sanjana Muka en Mr. Black. Gratis entry, gratis parkeren hem. To kal aap sabhi zarur aaiye. All Together Festival aaj aur kal rahega, to aaj aur kal zarur aap aaiye. Jis tarah se maine aapko khabar kiya, heel veel krampjes yahan par rahenge. Lekker eten en drinken. Heel veel podiumprogramma's. Onze musicgroep brengen. Oude gasten op dansoptredens brengen. Website alltogetherfestival.nl. U zie je website waar had ik informatie op kunt jagen. Radio SBS, TikTok per oude. Radio SBS, Facebook per. Sub je informatie op kunt jagen. चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर एंड लता जी की आवाज में. किशोर एंड लता प्रोग्राम में गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, जानवर और इंसान फिल्म का नाम.

0: किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई जानवर और इंसान फिल्म का नाम हजरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। 5 मिनट बाकी है प्रोग्राम में और वो भी 2 बजने में। एक आखिरी गाना, उसके बाद मैं आप सभी सुनने वालों से इजाजत और आज्ञा लूंगा। किशोर कुमार होगा एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में और गाना जो होगा, गाना का बोल है रुक जाना नहीं।
1: रुक जाना नहीं,
0: एक आखिरी गाना हमारा आज की प्रोग्राम का।
1: कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के।

किशोर कुमार की आवाज में आखिरी गाना, आखिरी गीत हमारा आज की प्रोग्राम में पेश की गए, रुक जाना नहीं। असरो बीते की आज का प्रोग्राम आपने सुना और काफी पसंद किया। शुक्रवार 5 जून का आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे कल शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में। सुबह 8 बजे से प्रोग्राम भजन यात्रा लेकर के एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को हम सेवा और खिदमत करेंगे इसी रेडियो स्टेशन के जरिए। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए सभी सुनने वालों जो स्टूडियो में तार किया है रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी ने हमारा साथ दिया है। भाई था आपका खिदमत गुजार रबीन, मिलेंगे कल सुबह ठीक 8 बजे प्रोग्राम लेकर के। RJ आंशुलिक के जरिए भी खबरें के बाद जरूर आप प्रोग्राम सुनते ही रहना और रात्रि में 8 बजे से हॉटेस्ट गाने नॉन स्टॉप 8 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक पेश किया जाएगी और 12 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक खूबसूरत फिल्मी गाने बस पेश होगा। और उसके बाद हम आते हैं प्रोग्राम लेकर के सुबह 8 बजे से। हम यही कहना चाहेंगे Have a nice weekend, शुभ वीकेंड हो और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशुलि करमलाल दी फहारते वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ मना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

वो बारिश की बूंदें इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, अ फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर, एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्प गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर, प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग.

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म चौदह फेरे कंठ सौंधो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर द फिल्म लगान एंड अर द फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्ट गेजॉन्ग डोर सोनू निगम एंड अलका याचिनिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इसका सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक बार आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस अयोध्या फिल्म पर रिंदा खजांदोर, आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर। खजांदोर हेमंत कुमार कोमदान, अयोध्या फिल्म खामोशी, फिया रेडियो SBS, तुम पुकार लो।

लीना और लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार न मिला, अरे प्यार कर ले, इज द फिल्म शुभ मंगल सावधान एंड इज गजंग बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड आंद्र. गाँव दा फेदर मैथ अव द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम, हम दिल दे चुके सिनम द टाइटल सॉन्ग दिस.

0: bandhen hai payal ne machaya shor was uit de film Mohabbate. Het volgende liedje is ook uit de film Mohabbate en het is Aankhe khuli ho ya ho band, didaar unka hota hai. Kaise kahu main o yaara ye pyar kaise hota hai.
1: Ek ladki thi deewani si, ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke, sharma ke, galiyon se guzarti thi. चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरे हरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिल विल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

देखो दिन ये न ढलने जाए. दित प्रातः लीजिए इस गजंग दौर आशा भोसले एंक वामा द फिल्म भावना. द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड इस फॉल्ड लीजिए फिया रेडियो SBS गजंग दौर श्रद्धा कपूर. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी.

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आउट द फिल्म जॉगर स्पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Leila met Leila.

ये नयन धरे धरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से, वो शाम कुछ अजीब थी।

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिका और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचिनी की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

बिंदिया चमकी चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे, इस गज़ंगों दूर सोनू निगम एंड अलका याचिक एंड कोमता ऑफ द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Gieton Kileher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.